मोने सचू, मोने मोने गिरिजे, इडी गिरिजे, एंड मोने, ना मक्कले, ना सचू